शाम का स्तंभर स्वामी सच में आच है साच रहे सब कुछ ससमा वैरे करे भरपूर राम नाम देवा मैं सुर नय लय प्राशित जाए नानक तुम खंतर पाए जुज में जोर चली चंद्रावल कान के समझा दम पाया।

पार पुस्तक संध्या बादंग सिल पूज बगल समादंग मुखचूट बिपु खंसार त्रैपाल तेहाल बेचारंग गल माला तिलक लाटंग दो तोती बस्तर कपाटंग जे जान सुन ब्रह्मं कर्मं सपो खुटने चो कर्मं कहो नानक ने चो त्यावे विन सात गुरु।

मन झूठे चुली प्रेम। कहो नानक सच त्याई है, सुच होवे ता सच पाई पुड़ चित्ते अंदर।

हरण है। करुणा में सब दुख हरो, हे शरण जोग दयाल है, दीना नाथ मया करो। शरीर स्वस्थ खीण समय, सिमरंत नानक राम दमोदर माधव है। चक्र चेहन अर बर्ण जात, अरपात नहन जे, रूप रंग अर रेख पेख, कऊ कहना सक्त के, अचल मूरत अनुभव प्रकाश, अमतोज की जय। कोट इंद्र इंद्राण शाह, शहान गणी जय, त्रिपवन महीप, सुर नर असुर, नेत नेत बाण तृण कहत, तव सर्ब नाम कथे कमन, कर्म नाम वर्णत सुमत, हम अवगुण परे एक गुण नाई, अमृत शाड बिखे बिख खाही, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनयो गुरु संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु राम दास रखो शरणाई। सो कहो टल गुरु सेवी है, अहनस सहज सुवए, दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत खसाम दी, नूरे अरसों कुरसों चटिए।

हम ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चालें मार्ग पंथा हम अंधले काओ गुर अंचल दीजै जन नानक चले मिलन था हम अंधले काओ गुर अंचल दीजै जन नानक चले मिलन था।

विषमार अथ अगणत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। जुगो जुग अटल दीन अर्दुनी दे मालक सर्वरे कायनात दे सांझे रहबर गुरुआं के गुरु पीरां दे पीर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी तिन्हां दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पावन स्थाना उपर जुड़मिल बैठे गुरु प्यार वालेओ सतगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा वरताई है, जो अपने पावन चरना कमलां पास जुड़ के बैठन दा सुभाग सतगुरु गुरु बाबा जी ने बख्शिश कीता है। आओ गुरु प्यार वालेओ, जो धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी दियां लड़ीवार विचारां रोजाना आप संगतां इन्हां पावन स्थानां तों श्रवण करदियां हो, वो चल रहीआं लड़ीवार गुरबाणी विचारां दे नाल सांझ पाईए। विचारां दी आरंभता तो पहलां सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन अपना रहमत भरिया हथ सिर ते रखन, सतगुरु आप रसना उत्ते वरत के पावन शब्द और गुरबाणी दी विचार सतगुरु आप करवा लैन और आप सरबत संगत असीस बख्शो। कोई रसना वांझी ना रहे, दोवें हाथ जोड़ अपनिया मन बिरतियां एकागर करदे हां, लवाओ गुरु चरणा विच हाजरी। अदब सहित सरबत संगत मिल करके उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। एक बार फिर करो रसनावां पवित्र और मिलके आखो जी सतनाम श्री

0: संपूर्णता की जी शब्द की। मालक कहते बैयर, बैयर शब्द वरत्या जाता पत्नी वास्ते, बांगरी बोली है यह। बैयर नाम सुहागणी, कहते हुण स्त्री नाम राही की बन गई सुहागणी। बैयर नाम सुहागणी, नाम दे राही सुहागणी सुहाग भाग वाली बन गई। सच सवारण हारो, हुण उहनू सवारण हारा कौन है? सच उहदा कंत। गुरु ने शिंगार लाया कंत नू पागी, जदों कंत नू पागी हुण कंत आपे ही सवारी ते शिंगारी जांदा है। वो आप ही दसी जांदा है वी मैनू की पाउंदा ते की नहीं पाउंदा। जिवें संसारक तौर ते आपां संसारी रिश्ते की गल करिए, पति पत्नी का रिश्ता विचोला विचोलगी करता है, विचोलगी करता है। वो पहले दिन दस दिंदा है भी लड़के वालियां नूं आ कुछ चंगा लगता है, दस दिंदा है पहले दिन लड़की वाले वो कुछ करते ने। फिर वो लड़की अपने कंत दे घरे चली गई, अपने सहुरे परिवार च चली। हुण जदों सहुरे परिवार च चली गई हुण उत्थे जाके की पता लगदा? सहुरा किन्नू की चंगा लगदा, किन्नू की चंगा नहीं लगदा, मेरे पति नू केड़ा, भावें संसारी गल ही करिए, उहनू केड़ा रंग चंगा लगदा है, उहनू केड़ा भोजन चंगा लगदा, उहनू केड़ा रहना चंगा लगदा है, उहनू केड़ा पहरावा, सारा कुछ पता लग जांदा है। फिर वह उस तरह रहन लग जाती है जिमें उहदे पति नू चंगा लगता है। बस इस तरह गुरु विचोलगी करता है, पहले दिन गुरु शिंगारदा है, पहले दिन गुरु शिंगारदा है भी आ शिंगार है, आ शिंगार तेरे कंत नू पाउंदा है। जदों कंत नू खसम नू जीव इस्त्री पा गई, पति नू पा गई, अकाल पुरख परमेश्वर नू पा गई, उदू अगे फिर जेड़ा कुछ उन्हूं चंगा लगता जीव स्त्री सहज सुभा करी जाती, सहज सुभा। नानक कामण कंते पावे आपे ही रावे, फिर पाउंदा ना आपे साजे आपे रंगदा ना, फिर आप रंगदा। आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे, नानक कामण कंतै पावै आपे ही रावे। फिर आप अपना आपा बख्शदा, आप दसदा मैनू आ चंगा लगदा मैनू। फिर जीव स्त्री जिवें जिवें उहदे प्रेम च भिज्जी जांदी, गुणवान होई जांदी ना, उहनूं पता मेरे खसम नूं गुण चंगे लगदे, अकाल पुरख नूं गुण चंगे लगदे। फिर उसे तरह जी मालक कहिंदे उह जीव स्त्री ਕਹਿੰਦੇ ਬਈਅਰ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗਣੀ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰੋ ਗਾਵੋ ਗੀਤ ਨਾ ਵਿਰਹੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿਯੋਗ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾ, ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਹਰੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਤ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ, ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਗਾ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੈ ਘਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਰਤੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੈ ਘਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ, ਤਿਤ ਘਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹੇਲਾ। ਉਹ ਸੋਹੇਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ, ਮੰਗਲ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗਾਉਣੇ ਹੁਣ ਵਿਯੋਗ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ। मालिक कृपा करन किते गुरु दे दर्शाए राह उत्ते गुरु दे दर्शाए मार्ग उत्ते चलण दी जाच आ जाए। गुरु दे दर्शाए राह उत्ते चलदिआं असीं अपनियां जिंदगियां अपने जीवन सफल करके जाइए। मालिक अगे ए अरदास करदे रहा करो, विसर नाहीं दातार अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात नानक चाओ एहो, तां जो साढ़े भी ये लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले, हुईयां भुलां दी खिमा बख्शणी। आओ गुरु बाबा जी के पावन बचन हिरदिआं विच वसा लईए।
1: बैयर नाम सुहागणी सच सवारण हरो, गावो गीत न बिरहड़ा नानक ब्रह्म विचारो।
0: आप सरबत संगत दे चरणा दे विच एक बेनती, जो संध्या वेले दे दीवान ने उन्हां दीवाना दे विच मौसम की तब्दीली अनुसार समय की तब्दीली की गई है, जो सोदर बाणी दे जाप ने कल रोज तो साढ़े छे बजे आरंभ होणगे, 22 तरीक तो जी साढ़े छे बजे आरंभ होणगे, 6:30 तो लैके 7 बजे तक, फिर उपरंत 7 तो लैके 8 बजे तक आरती कीर्तन, 8 बजे तो लैके 9 बजे तक इतिहासक विचारा, और 9 बजे तो लैके 10 बजे तक गुरबाणी कीर्तन, 6:30 बजे तो लैके 6:30 तो लैके 7 बजे तक सोदर बाणी दे जाप, फिर 7 बजे तो लैके 8 बजे तक आरती शब्द कीर्तन, उपरंत 8 तो 9 इतिहासक विचारा, फिर 9 बजे तो लैके 10 बजे तक गुरबाणी कीर्तन उपरंत समाप्ति होवेगी जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम वाहेगुरु साहिब जीओ। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती। मन वजियां वधाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईयां शब्दोता गावोरी केरा, मन जनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रो तू मन मेरे, दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्ज सब सवारना। सवना गलां सम्राट स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नहीं करते रे, करता तेरा सब कुछ दे सो पावे, सदा सिपसाला तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे, साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइयां, कर शांत सुख मनाय उसे, आज ने इच्छा सब पुजाइयां, सदा कुर्बान कीता गुरु वेटों जिस दियां ए बड़ियाइयां। कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुपागे, घर सुपागे शब्द वाजे, कला जित कर धारिया, पंज दूत दवास कीते काल कंट को मारिया, तुर कर्म पाया तुर जिन को सेना, मर कै लागे कह नानक तै सुख हो, तित कर दवाजी अन सुनो बड़ भागी हो, सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सुगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पए सरसे पूरे गुर ते जानी उनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनद तुरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत मात दिवस रात द्वैधाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाईयां बुरियाई धर्म दूर परमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए।

आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर।

अमृत छाड़ बिखे बिख खाही, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जमत्रास मिटाई। एक

देही रोग ना लगई पलै सब किछ पाए जेता समुद सागर नीर भरे आ ते औगण हमारे

मन है पया परगासा कोए ना पहुंचन हारा दूजा अपने साहिब का परवासा गुर पूरा भेटियो वड पागी मन है पया परगासा कोए ना पहुंचन हारा दूजा

मन पौ करया, उड़े उड़ आवे सै कौसा, तिस पाछे बचरे छरया, तिन कवण खलावै कवण चुगावै, मन में ही सिमरन क्रिया। सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइय, तेरा अंत ना पारा भरिया। सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइय, तेरा अंत ना पारा भरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख इक ओंकार सदगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर गम्मा गम्मा पारा, सब त्या वहीं सब त्या वहीं तुद जी, हर सच्चे सिरजन हारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्याव हो संतो जी, सब दुख विसारन हारा, हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घड़ घड़ अंतर सर्व निरंतर जी, हर एक को पुरख समाना, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाना, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हां तुद बिन अवर ना जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाना, जो सेव है जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना, हर त्या वही हर द्या वही तुद जी, से जाने जुग में सुखवासी, से मुक्त पाए, जैनो हर त्याया जी, तेनो टूटी जमकी फांसी, जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिनका पौ सब गवासी, जिन सेव्या जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनेक करें हर पूजा जी, तप ताप ही जप ही बेअंता, तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भरे जन नानक जी, जो पावै मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे बड़ अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई, तुद आपे पावै सोई वरतै जी, तू आपे करहें सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सिका जानोई। आसा महला चौथा।
तू करता सचियार मेंडा साई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू देहे सोई हो पाई रहो। सब तेरी तू सबनी ते आया, जिस नाम कृपा करहें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुगवाया, तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरिया सब तुझ ही माहे, तुझ मिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाणे। जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद मिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखे हैं जाने हैं सोए, जन नान गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़े भैरे निवासा। पानी पावक तिन्हे किया, पंकजो मोह पग नहीं चले। अम देखा तहें डूबियले, मान एक न चेतस मूड़ मना। हर बिसर तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जति सती नहीं पड़या। मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवंत नानक तिनकी शरणा। जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा। भई प्रापत मानक देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरा किते ना काम, मिल साध संगत भाजी केवल नाम। संज्ञा लाग पव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहो। जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साध न जन्या हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। जप तप संयम धर्म न कमाया, सेवा साध न जन्या हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रख हो शर्मा। इक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो वाच बेनती चाव पाई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सवय तुम काव हो। आभाद दे मुहि बचाव हो, सुखी बसे मोरो परवारा। सेवक सिख सवय करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए। सावैरन को आय संगरिये, पूर्ण हुए हमारी आशा। तोर भजन की रहे प्यासा, तुहें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं। जो बर चहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिखा मारे तारिये, चुन चुन शतर हमारे मारिये। आभाद मुझे उबरिए,
मरण काल का त्रास निवरिय हो जो सदा हमारे पक्षा श्री अस्तु जो करियो रक्षा राख लियो मोहे राखण हारे साहेब संसहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बबतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सवलोक सवारा नमस्कार है तहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जक्षण उपजायो आद्यंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तसही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो शत्रण को पलमो बद कियो घट घट गए अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चिंटी दे कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर बछाने घट घट के पढ़ पढ़ की जाने जब उदकर्क करा कर तारा प्रजा तरत तव देह अपारा जब आकर्ख करतो हूँ कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहते नर आलम जानत बेद भेद अर आलम रंकार निर्विकार निर्लंब आद अनीर अनाद असंभ ताका मूड़े उचारत भेदा जाको भेव ना पावत बेदा ताको कृपाण अनुमानत महामूड़ कछ भेद ना जानत महादेव को कहत सदा शिव रंकार का चीनत नह भिव आप अपनी बुध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती तुमरा लखा ना जय पसारा कि विदस जा प्रथम संसारा एक रूपे अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहीं पुपा अंड जे रासे तजकीनी उतबज खान बहर रच दीनी कहो फूल राजा हवे बैठा कहो सिमट भयो शंकर अकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंपाओ आ जुगा स्वरूप स्वयंपाओ अब रक्षा मेरी तुम करो सिखे उबार आसिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणगाता जे आस्तु जे तव शरणी बरे तिनके दुष्ट दुख्त हवाय मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट न है रक्षा हुए दाही सब कला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल कृपा दृष्ट तन जाहे न हरियो ताके ताप तनक मै हरियो रिद्ध सिद्ध कर्मों सब होई
दुष्ट सहा शवय सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संवारा काल फांसते तहें उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दौख तेरा, खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो उबारी, सर्वठो मोह सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई, खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो उबारी, सर्वठ मोह सहाई दुष्ट दोखते ले हो बचाई। सवैया पै गहे जब ते तुम्हारे तब ते को आंख तरे नहीं आने, राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो, सिरियस पा कृपा तुम री कर मैं ना कहो, सब तो हे बखाने दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ के गए हो तुहारो द्वार, बहें गहे की लाज अस गोविंदास तोहा, सगल द्वार कौ छाड़ के गए हो तुहारो द्वार, बहें गहे की लाज अस गोविंदास तोहा, राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता बाया सहज सेती मनवजियां वादाइयां, राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां, शब्दो तंगावो हरी गेरा मन जिनी मसाया, कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मसारना, अंगीकार ओहो करे तेरा कारज सब सवारना, सबना गलना समृत स्वामी सो क्यों मनो मसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, सचि साहेबा क्या नाही घर तेरा, करता तेरा सब किच है जिस दे सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन मसावे, नाम जिनके मन मसिया वाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा, जैनो भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन वसया, जैनो इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटह, जिस दियाँ एह वडियाइया
कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधार वाजे पंशव तित कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक तै सुख होआ तित घर अन्न हद बाजे आनंद सुनहौ बड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पाए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर हुरे बिन्नवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन्नहद तूरे सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर हुरे बिन्नवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन्न हद तुरे मुंदामणी महला पंजवा थल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख बीजारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे अधारो जे को खावे जे को पंचाय तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिए सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग कीतोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पाया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरे आ तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ता जीवा

दोहरा आ गया भई अकाल की, सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी माने जो प्रभु को मिलबोच है, राज करेगा खालसा, खुआर हुए सब लेंगे, खुआर हुए सब लेंगे।

कर्ता पुरुष निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद तुध आगैरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा।

कोई न जाने ऊचे ते सगल सामग्री तुमरे तुम ते हो ऐसो तुमरी गत मित नानक दास

0: दोहरा आ गया पैया काल की, सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी माने ओ, जो प्रभु को मिल बोच है। राज करेगा खालसा, खुआर हुए सब मिलेंगे, खुआर हुए सब मिलेंगे। बोले सो निहाल, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जल की पीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा,

0: हे जन्म तुम्हारे लिखे
1: कह रविदास आस लग जीवो
0: चिर भयो दर्शन देखे सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्व कला बन आई हर गुट पई सगले जुग अंतर गुर नानक की बड़े आई सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवा

सगले दुख बिनसे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर बाबा दी।

आवे नासी पुरख पाया परमेश्वर व सोव खंड ब्रह मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरिया राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक हर नामे ही सुख मंडाए।

संत टहल के बेला इहा गाड़ चलोवार लाहा आगे वसन सेला आओद कटह दिन श्रेणारे मन गुरु मिलका सवारे राव ए संसार विकार संसे मैं।

अर्त अर व्योम अर पवन ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो सासरिख निस सूर दिन सैल तरु फल फूल दियो सुर नर सपत समुद्र के तारे ओ त्रिभवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास कच्चो कंचन पयो शब्द गुर श्रवण सुनयो बिखते अमृत होयो नाम सत गुर मुख पण्यो लोहो होयो लाल नदर सत गुर जद तारे पाहन मानक करे ज्ञान गुर कहयो बिचारे काठो श्री खंड सत गुर कियो दुख दर दर तिन के गए सत गुरु चरण जिन परसया से पास परे सुर नर पए जाम गुरु होए वाल तने क्या गर्व दीजे जाम गुरु होए वाल लख बाहे क्या कीजे जाम गुरु होए वाल ज्ञान अर ध्यान अनन पर जाम गुरु होए वाल शब्द साखी सो सच्चे कर जो गुरु गुरु एहनस जपे दास

और गुरु बिन समझ न आवे, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। गुरु कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुरु कर शब्द सपुन, अगन कटे सब तेरे। गुरु नैन बैन गुर गुर करो, गुरु सत कव नल कह।

गुर कर मन मेरे तारण तरण समरथ कल युग सुनत समाद शब्द जिसके रे फुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो तरत त्यान बसत तह नेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परे रे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु मुख देख गुरु सुख पायो हुती जो प्यास पियूस पिवन की बंछत सिद्ध को बिद मिलायो पूरन पौ मन ठौर बसो रस बासन स्यो जो दहंग दिस तायो गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम जलंतीर विपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हथ तरयो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरयो निसबासुर एक समान त्यान सो नाम सुने सुत पान डरयो पन दास सो आस जग

समरथ गुरु सिर हथ धरियो, अब राखो दास पाट की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाखश फारे कर आज, फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत वस्त्र दीन बहुत साज, सोदामा अपदा ते रखिया, गनिका पड़त पूरे ते काज, श्री

ब्रह्मा बिछन सिर ते अगनत तिनको मोह पया मन मद का चौरासी लख जोन पाई रिजक दिया।

सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे अकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा में सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे

टड़ियाँ सभी गोपियाँ पहरकन गोपाल यहनी पौर पानी बसंतर चंद सूरज अवतार।